0: Rikou, lese li.
1: Reten li kay, mpwa gen.
0: Reten li kay.
1: Kiskou ti kamouna kamata ke yvas koni se. Koumane pe iti 8.4.
0: Kisegele na konya di kere ke nana. Ou kapono ke na ouzon?
1: Kone ki ke na ouzon.
0: E, uno ke na ou di kere ke te wakou ke kapo anyolousa.
1: Hey.
0: Ke ba ke o be a mo hala fase a go mbobe o iketsetse molemo o he mogadu khimpe ge fe bo ntate monyetla wa bona ke nakwa digeleke
1: okay
0: thank you rato la ka thank you hello
2: ndile le go zage mo ga o go ba ha ये मैं जितने सबको आगे करने में कमाऊँ हूँ यार दिखी कितना हरी जाला का देखी जिम्मेदार का फ्रोबूंग ऐसा रुको हरी जिम्मेदार ये मुझे क्या बता हूँ को और आये तो जाने के तुम ऐसे हंड्रेड दुगने फ्रोबूंग या दो और ऐसे हंड्रेड साला बेचारा एक जन्म में भूगा हो चुका है हम बेचारा एक आवाम भूगा लेकिन शादी ने कब भगा आउट हुआ था कि शादी का यार बोले कि मुझे तेरे साथ यार कुछ नहीं रह पाया हूँ कब शुगु बाल बोले मैं क्यों नहीं जाने जाने वो कर हुआ था तो उसको बोले लगा दो वाले वामा सीधे कि बोले धमाए राले धमाए ना कि मैं सीधे देखा भाई सीधे तो बांगो वासे भगवान सारा से शब्दों को रंग उठेगी बा ये राखे से के देवी ना हम राखे बातों और ना साजी
0: पीगी ने सुबह मुन्या देवा
2: अला अला
0: ए वन साथ आता तीन
2: Ah,